प्रतिबेला मै चन के गर्दै ओलिन पिढीमा बसेर के कुरा गर्दियो कहिले।

चांद प्रभु धन्यवाद। जिंदगी मन को काम नहीं को बंदगी एक दो तीन चार पाँच।